0: ये खबरें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: फलस्तीन की सरकारी खबर रसाई एजेंसी वफा के मुताबिक इसराइली गैर कानूनी आबादकारों ने रामला के शुमाल मगरब में एक नई गैर कानूनी बस्ती की चौकी के लिए तामीर शुरू कर दी है। अगर यह तामीर मुकम्मल हो जाए तो इससे उम्मे सफा के इर्द गिर्द चौकियों की तादाद 6 हो जाएगी। अक्टूबर 2023 में इसराइल की जानब से गजा में नस्ल कुशी की मुहिम शुरू होने के 1000 दिनों में गैर कानूनी आबादकारों ने मकबूजा मगरबी किनारे में 200 चौकियां कायम की हैं।
2: इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज मुल्क के जनूब में अपनी जारहियत को जारी रखते हुए लुबनान में मुमकिन तनाज़े की तैयारी कर रही है जो कई दिनों तक जारी रह सकता है। इसराइल के चैनल 12 ने इतवार की शाम को नामालूम फौजी ज़राए का हवाला देते हुए इत्तला दी कि फौजी लुबनान में तनाज़े के इम्कान के लिए तैयारियाँ कर रहे हैं जो कई दिनों तक जारी रह सकता है। नशरियाती इदारे के मुताबिक इसराइली फौज हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हुए मजीद हमलों की भी मनसूबाबंदी कर रही है।
1: अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने वजीर दिफा पैट हिक्स को जनूबी कोरिया के साथ तयशुदा मुश्तरका फौजी मशकों के हुजम में नुमाया कमी करने की हिदायत दी है। ट्रंप ने इस फैसले की वजह भारी मुसारफ और शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन के साथ अपने ताल्लुकात को करार दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफार्म ट्रूथ सोशल से जारी करदा पैगाम में उन्होंने कहा है कि शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रखते हैं। इसके पेश नज़र मुझे माजी में अमरीका के जनूबी कोरिया के साथ मुश्तरका फौजी मशकों में शिरकत पर रजामंदी जाहिर करने पर खुशी नहीं है। ट्रंप ने कहा है कि ये फौजी मशकें शुमाली कोरिया की हुकूमत को एक नामुनासिब और मुखासमाना पैगाम देती हैं, लिहाजा इन मशकों के हजम को कम करना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा है कि ये मशकें न सिर्फ बहुत महंगी हैं और इन अखराजात का बड़ा हिस्सा हमेशा की तरह अमरीका बर्दाश्त करता है, बल्कि ये ऐसे मुल्क को मुकम्मल तौर पर नामुनासिब और मुखासमाना पैगाम भी देती हैं जो इस वक्त तक कोई खतरा नहीं बन रहा और एहतराम पर मबनी रवैया बरकरार रखे हुए है जब तक कि डोनाल्ड जे ट्रंप सदर हैं। ट्रंप ने कहा है कि फौजी मशकों को मुकम्मल तौर पर मनसूख करने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है, इसीलिए मैंने वजीर दिफा पैट हिक्स को हिदायत दी है कि वो मशकों के दायराकार को नुमाया तौर पर कम करें। ट्रंप ने इस पेशरफ्त को जनूबी कोरिया के साथ होने वाले एक हालिया राबते से भी जोड़ते हुए कहा है कि मैंने कुछ अरसा कबल जनूबी कोरिया के सदर ले जे म्यूंग से पूछा था कि आया सियोल वाशिंगटन के साथ ईरान को जौहरी हथियारों से पाक करने की कोशिशों में शामिल होगा कि नहीं। ट्रंप के मुताबिक उन्हें नफी में जवाब मिला था।
2: हंगरी के वजीर आजम पीटर मिगियार ने हंगरी के M3 मोटरवे पर रात के वक्त पेश आने वाले अलमुना ट्रैफिक हादसे में 12 अफराद की हलाकत और कम से कम 20 के शदीद जख्मी होने की तस्दीक की है। हादसा मकामी वक्त के मुताबिक रात तकरीबन 1 बजे हंगरी के शुमाल मशरकी इलाके मेजो के स्तीश के करीब पेश आया। पोलैंड की नंबर प्लेट वाली एक सियाहती बस जिसमें 57 मुसाफिर और 2 ड्राइवर सवार थे सड़क से फिसल कर खाई में जा गिरी और उलट गई। मिगियार ने फेसबुक से जारी करदा बयान में कहा है कि M3 मोटरवे पर रात के वक्त पोलैंड नंबर प्लेट वाली एक बस सड़क से फिसल कर खाई में जा गिरी। हादसे में 12 अफराद हलाक और कम से कम 20 शदीद जख्मी हो गए हैं। मैं मुतासिन के अहले खाना से दिली ताज़ियत का इजहार करता हूँ। हंगामी इमदादी टीमों ने सर्च एंड रेस्क्यू टीमों को फौरी तौर पर जाए हादसे पर रवाना किया और इज्तिमाई जख्मियों से निमटने के हंगामी प्रोटोकॉल फौरी तौर पर नाफिज कर दिए गए। मकामी ज़राए अबलाग के इदारे 24.hu के मुताबिक मकामी आफात इंतजामिया के हुकाम ने इतवार को जारी करदा बयान में कहा कि फायर फाइटरों ने जाए हादसे से 35 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया है।
1: अवामी जमहूरिया कोंगो में एबोला की वबा से 2325 अफराद हलाक हो चुके हैं। सरकारी आदाद व शुमार से पता चलता है कि ये मुल्क की तारीख में सबसे मोहलिक तरीन वबा बनने के लिए 2018-2020 के वबा के जानी नुकसान से भी आगे निकल गई है। कोंगो के इंस्टीट्यूट बराए अवामी सेहत आमा ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि तस्दीक शुदा वाकयात की तादाद बढ़कर 4,945 हो गई है, जिसमें पिछले 24 घंटे के दौरान सामने आने वाले 101 नए वाकयात भी शामिल हैं। 2018-2020 के दरमियान वबा से 1,000 अमवात तक पहुंचने में तकरीबन 5 माह लगे थे, जबकि कांगो की मौजूदा वबा 3 माह से भी कम अरसे में 2,000 अमवात का सबब बन चुकी है।
2: फ्रांस के मगरबी सूबे लांदेस में कई दिनों से जारी रहने वाली आग पर काबू पा लिया गया है जिसने 1,700 हेक्टेयर अराजे को राख का ढेर बना दिया। लांदेस के इंतजामिया की जानब से अमरीकी कंपनी एक्स के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी करदा बयान में बताया गया कि सूबे के गांव लगनून में 13 अगस्त को भड़कने वाली आग पर अब काबू पा लिया गया है। बयान में मजीद कहा गया है कि आग के बायस महफूज मकामात पर मुंतकिल किए जाने वाले मकामी रिहायशों में से 250 अफराद अब अपने घरों को वापस लौट सकते हैं। تقریباً چار دن تک جاری رہنے والی اس ہولناک آگ میں 1,700 ہیکٹر پر محیط رقبہ جل کر خاکستر ہو گیا۔ اپنی تاریخ کے بدترین فائر سیزن کا سامنا کرنے والے ملک فرانس میں اس سال 1,17,000 ہیکٹر سے زائد کا رقبہ شولوں کی نظر ہو چکا ہے، جبکہ آگ بجھانے والے 4 فائر فائٹرز ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی صدائے ترکیہ سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔

सामिन, क्या आपको अपना बचपन याद है? और क्या आप जानते हैं कि वो दौर जब पलक झपकने की तरह वक्त नहीं गुजरता और दिन लंबे और भरे हुए होते हैं? परेशान ना हो, आज हम पुरानी यादों के बारे में बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप उन औकात को याद रखें जब वक्त मुख्तलिफ तरीके से बह रहा था। वो वक्त जब हम किसी चीज़ को पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि अपने दोस्तों से मिलने के लिए भागते थे। क्या आपको वो दिन याद हैं जब हम कहीं जाने की बेचैनी और जल्दी में नहीं मिलते थे? सनतकारी के बाद शहरी आबादी में इजाफा और उसके बाद होने वाली तकनीकी तरक्कियों ने आलमगीरियत के रुझान को जन्म दिया, जैसा आज हम सब जानते हैं। पहले कंप्यूटर नेटवर्क के क़याम के साथ ही दुनिया एक छोटे से गांव में तब्दील हो गई। यकीनन इस पेशरफ्त के भी मुस्बत नतायज बरामद हुए, लेकिन एक वसी नुक्ता नज़र से मनफी नतायज मुस्बत नतायज से कहीं ज़्यादा हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा मेहनत करने और ज़्यादा पैदावार के लिए तेज़ी लानी थी। तेज़ खाने, तेज़ सोचने और पेशरफ से महरूम ना होने के लिए हमें तेज़ रफ्तारी करनी पड़ी और हमने इसे जल्दी ही अपना लिया। सिकुड़ते हुए गांव में सब कुछ यकसा नज़र आने लगा और छोटे शहर और मकामी प्रोड्यूसर्स इन तरक्कियों से बड़ी बुरी तरह मुतासर हुए। मकामी और रिवायती इकदार को मादूम होने का ख़तरा था। इस मौके पर इटली में एक तस्वुर उभरा, सितास्लो यानी पुरसकून या काम सिटी। आज हम इस प्रोग्राम में तुर्की के पहले पुरसकून शहर सफरी हिसार के बारे में बताएंगे।

सफरे हिसार में तियोस कदीम दौर के सबसे अहम और कदीम तरीन बंदरगाही शहरों में से एक वाकई है। तियोस का कदीम शहर अनातोलिया में कायम फनकारों की पहली यूनियन का घर है और दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर डियोनीसोस भी यहाँ वाकई है। सफरे हिसार में एक और काबिल जिक्र जगह सियाजिक है, जिसका किला सलचुकी दौर से है। इस जगह पर अम सड़कें हैं जहाँ वक्त वाकई सुस्त हो जाता है। इसके बहुत अच्छी तरह से महफूज फन तामीर के साथ महल की दीवारों के अंदर ये छुपा हुआ है। इतवार के दिन सियाजिक अपने मकामी बाज़ार के लिए भी मशहूर है, जहाँ तैयार करदा सिर्फ ताज़ा मसनूआत ही फरोख्त की जाती हैं। इसके नीले परचम वाले साहिलों, नारंगियों के बागात और जैतून के दरख्तों के साथ सफरी सार एक खूबसूरत जगह है, जहाँ ज़िंदगी बेफिक्र है। स्ट्रीट लाइट्स शमसी तवानाई से चलती हैं, नकलो हमल में साइकिलों की हौसला अफजाई की जाती है और सड़कें बुज़ुर्गों और माजूरों को जहन में रख कर बनाई जाती हैं। हर साल सफर हिसार में एक सीड एक्सचेंज फेस्टिवल का इनेकाद किया जाता है, जहां मकामी बीजों को कई गुना बढ़ाकर किसानों में तकसीम किया जाता है। सफर हिसार अपने रेस्तरानों के साथ एक सुस्त शहर होने की ज़रूरत को भी पूरा करता है, जहां मकामी पकवान पेश किए जाते हैं।